भगत अमरीक बारे भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अमरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अमरीक जिन्हां दे पिता दा नाम

ओड़ीसा वाल सी। ए राजा अमरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा है। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। ए भी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक दी रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अमरीक दी रक्षा करनी। इस गल दी गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गऊं राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गऊं दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्वासा रिक्की दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिक्की नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिक्की क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अमरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिक्की कहन लगे ठीक है राजन। जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीकन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना व्रत तोड़िया। ते दुर्व्रत तोड़िया उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

0: कलयुग
1: में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना।
0: कलयुग में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दर्शन।